संसार ते आके प्यार ही वंडिया है, पर संसार ने सदा ही रब दे प्यारियां नू दुख ही वंडिया है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हंकारी पंडिया ने जदों देश परदेशा विच जाके हुक्मनामे भेज दिते भाई बड़ा यज्ञ कर रहा है कबीर, ता अकाल पुरख वाहिगुरु आप आके फिर सारियां नू भोजन छकाया, अपने भगत की रक्षा की, अज भी रक्षा कर रहे। कबीर जी कहते हैं जदों सानू जंजीरां विच जकड़ के गंगा दी लहर विच दबो दिता गया, फिर सानू डर नहीं लग्या, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु अंग संग है, फिर डर कादा भाई ना। ओए मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, जिन्हां दे हिरदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम है, वो डरदे नहीं भाई, अंग संग हन। निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल, निर्भो दाता अकाल पुरख जिन्हां दे हिरदे विच वस गया, उन्हां नूं भाई किस दा डर है। जिवें कबीर जी कहंदे हन मन ना डिगे तन काहे को डराए।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल कर। सेवा तो बिना तेरा शरीर निष्फल है सिमरन तो बिना तेरा मनुष्या जन्म सफल नहीं हो सकता। होर जितनिया भी तेरिया करनिया हन ओ किसे कम नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह एक बड़ी सुंदर रमणीक थां ते समुंदर दे किनारे आप जुड़े बैठे हन। कीर्तन हो रहा है मर्दाने ने नेत्र खोले सामने की तकिया एक मृतक शरीर पे आया।

उसने इस शरीर नू सुंघिया ते वापस चला गया। क्योंकि कई दिनों तो भुखा सी बुग्याड़ फिर आया, हाथ सुंगे, मस्तक सुंगया, पैर सुंगे ते फिर वापस तुर गया। कीर्तन भी समाप्ति हुई, धन गुरु नानक पातशाह बिरती तो उथान होए, मर्दाने ने बेनती की गरीब नवाज सच्चे पातशाह, आ मृतक शरीर पिया है, बाघ ने पहला आके इस नूं सुंघिया चला गया, फिर इसका मस्तक सुंघिया, हाथ सुंघे, कदम सुंघे, फिर वापस चला गया। जापदा सी कई दिनों तो भुखा है, पर उसने अपनी खुराक वेख के इस नूं भक्षण क्यों नहीं कीता? ता धन गुरु नानक पातशाह कहणगे, मर्दानिया, आ कीर्तन दी रब्बी बाणी दी आवाज इसते कन्ना तक पहुंची है और इसका मन निर्मल हो गया, हिरदा स्वच्छ हो गया। इसने जिस मृतक शरीर नूं सुंघिया है ना, इसलिए सुंघिया कि इसने कोई चंगा कर्म भी कीता, लेकिन कोई नहीं कीता। फिर मन विच आया, हो सकता है कदे अपने गुरु अगे इसने शीश निवाया होवे, शीश सुंघिया, हो सकता है इसने कदी सेवा करके अपने हाथ सफल कीते होन, हो सकता है कदी इसते कदम सतगुरां वल गए होन, गुरु वल गए होन, पर मर्दानिया इसते कदम सदा माड़े पासे जांदे ने, इसके हाथ सेवा तो बिना इसका मस्तक कदे गुरु ने चरना ते नहीं चुकिया, जिस करके बग्याड़ नू ज्ञान हो गया कि जे मैं इस पुरुष का मांस खा लिया तो मैं भी कुंभी नरक का भागी बन जावांगा। सो प्यारी सात संगत, मनुष्या जन्म उन्हां दा ही सफल है जिन्हां ने भाई सेवा और सिमरन करके

सुख प्रजा दी सेवा करके भुखे नूं भोजन देना, लोड़ अनुसार कपड़ा लीड़ा गरीबां नूं देना, उन्हां दीआं लोड़ां पूरियां करनियां। जे ए सारा धन तूं नाल ले जाना चाहुंदा है ना, तां संसार विच जितने भी गरीब गुरबा है सब नूं वंड दे।

ए दरगाह विच दे देवी कदे कोई नाल कोई वस्तु गई है। आ जेड़ा अपना शरीर है ए शरीर नाश

ते मैनू निवाजेगा, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां, कि कृपा कर मैनू अपना।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

0: धर्मात्मा हो।
1: गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे दसो भाई ऐसा कोई है?
0: बताओ अगर कोई धर्मात्मा हो, जो इंसान के जामे में परमात्मा हो, ना जिस

0: गला खुद कटाने को बस आप ही है।
1: दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गए ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू में साका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।

सब सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडण तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान तर जल्दी सब पृथ्वी दे साई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई करते, जगत जलंधा रख लै अपनी कृपा दा, जित द्वार है उपरे तित है ले बार, जिमें बचदा ही बचा। इन्हां तपदियां सर्दियां जिमें शांति दे सकना मेरे साहब उवें ही दे। जिस राह तो जिस दर तो कोई तेरे नाल जुड़दा जोड़ लै साहब। टुटे हुए मनुख नूं, बिखरे हुए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इन्ना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप भी सुखी होवे ते आले दुआले नूं भी सुख बने। इत्थे भी कहिंदे ना, आप भी सुख पा, होरना नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख निध नाम, नाम वो खजाना है जिस सारे सुख ने, ते जिन्होंने इस सुख नू प्राप्त करने का यत्न किया है उन्होंने जो कितने किनका मात्र भी इसका सची मुची प्राप्त हो गया, थोड़ा जिहा भी उन्होंने रस आ गया है। साहब कहते हैं मैं उनकी वडियाई नहीं दस सकता, संकल्प भी बख्शे है, आप संकल्प करिए, मन में एक इच्छा करिए, आशा करिए, सिमरों सिमर सिमर सुख पावो। जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, कल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन में शरीर में बरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे। सिमरों जात विसुंभर एक है, वो जरा विश्व दा मालक वाहिगुरु अकाल पुरख है, उसनू याद करा, उसनू चेते करा, उसनू जपा। जिसनू अगे भी बड़े याद करते, नाम जपत अगणत अनेक है, वेद पुराण सिमरत ये सारे जिसकी सिफत करते ने, शुद्ध अखरां नाल जेहड़े उन्हू याद करते ने, शुभ बचना नाल, शुभ भावना

क्या मांगे आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है ये आत्म रस दी खुराक है आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।

अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण अधारा राम। ए राग बिहागड़ा द सतगुरु पातशाह जी का पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उच्चारण किया है। राग भी बिहागड़ा ही आप जी ने सरवण किया है। एक बंदिश रीत जो है पुरातन मान योग सत्कार योग साढ़े पिता जी गायन करते ने, तो आओ इस रीत राग बिहागदी है हुणे याद आई है, आओ बड़े प्यार नाल सरवण करो।